श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री हर श्री

कोई ना वो ना न्या ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अतेव हरि अभिव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि। जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि पृच्छस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि। भजस्तु वं रटस्तु वं तटस्तु।

त्व प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गत हा विभूत दारिग दुआ मसान बास करे करत है गुगमट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव।

भूत बन चारि छिद छाना सबै दूधा धारी पौन गए हारि सो भुजंग जानियत है। दृण के बछैया धन लोभ के तजैयत तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान डानियत है। जिते बड गानी तेनो जानी बखानी नाहे असना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भोजरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह पखानी है। बल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदस फिरैया दत्त भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगी ऋषि कहत जग आग के बछैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बंडाई देज चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब थेन चारि लिखि के स नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को खनैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे बूझत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटाधारी सती सज बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास।

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमात शीतल नसुर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्म से न वेद जारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विष्ण के ते वेद यो पुराण के ते सिमृत समूहन के होए होए बिते हैं। मोर दीम तार कित असुनी कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है। पीर यो पिकम्बर कित गण न परत ते भूमि हित होए के फिर भूमि ही मिले है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई गोसरो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को तलत है। मान से महीब औदलीब कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम में मिलत है। सिजद करे अनेक तोप जी कपट भेष पोषती अनेक दानी बावत है। शीस को कह भयो मल जप काढ़त अनेक दंड सोत न डंडो दयास टांग अथ तीस को कह भयो रोग जप डर रहे उर्द मुख मन ते न मुंड ने हो रायो अद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रबीन एक भावना बीन कैसे पावे जगदीस को। शीस पट कत जाके कान में खजूरा था से मूंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को बचैया सदा बान को ब्रह्मैया और दूसरो न भूक सौ कहा भयो भेड़ जो कसत शीस बृछन सो माटी को बचैया बोल पूज लीज जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन गरियोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठौर पास करे काक और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ डंड धारी होई के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल कुंजर ओ गदह अनेक दा पुकार ही कहा भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाकू।

आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वछ हो सब पच उठ जाएंगे।

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज लेन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोत हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हारे जो आचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली हारे बीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बजाए।

दुखं कहु औखदि रोग के सोख सुखं कहु देव विद्या कहु दैत बाने कहु जच गंधर्व विघ्न नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ

गाभरू पंकु चेष्टा चार चित्रं स्वरूप पंकु परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ

नगी तंग कहूं मले जवा ख्या कहूं बेदरी तंग कहूं रित विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडू गूड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीराज अधिकारी।

तन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात, जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं व्योतबान, जय जात पात नहीं सत्र मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं सत्र साध, जय नाम।

जय जम बह जो कण जो जुअंग भय कम बह मेर पयाल भुवंग तब तापस सर्व जलेर थन थन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद व्यंगन खंड अभूत छेद छंगन काल अपाल दयाल सुवंग जेठियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचयंग देव देव बरंग सबकी दीन जमीन जमा जय रचयंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जय रचयं छत्री छत्र शितं जय राग न रेख न रोग भणं जय द्वैख न दाग न दुख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आव प्रचंड लियो श्रेय सिंधरो बिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव बेव नरंग नर पाल रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेत ज्योत भुजंग किये देव देव सराद पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम बह किन्नर जच्छ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि की।

भूता छूत पतंगन घात प्यादा नाद गतंगन खेद वेद छेद नरंग जय चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय वंदत देव देव नरंग गण किन्नर जंग चेमण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेब अनंत कहे जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जप सत सिंध दो मुहताप तप कई कल्पन लो तब ताप कर नहीं नैक कृपा निध पान पर जय भोकड़ धरम सफेत जह एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है देव भूल न काल फंदा फस है।

नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता। अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पुत्र जानी है। न राग रंग रूप है, न रोग राग रेग है, अधोग ताग दक है, अभूत ब्रह्म भेक है। न तात मात जात है, न बात जिहन वर्ण है, अदेक सेक भेक है, सदीव विश्ववर्ण है। विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमे जमान के बिखे सदीव करम भरम है। अद्वेक है, अभेक है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठौर में विशेख आन मानी है। जन जंत्र न जंत्र में, न मंत्र में, न तंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई। न करम में, न धर्म में, न भरम में बताई है, अगंज आद देव है कहो सो कैसे पाई है। जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है, न घाट है, न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है। न हान है, न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानिए। न देह है, न गेय है, न जात है, न पात है, न मंत्र है, न मित्र है, न तात है, न मात है। न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, न दोख है, न दाक है, न द्वैक है, न देह है। न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है। न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है। न नेह है, न गेय है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है। न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजरम है, अभेक है। न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है।

न सीत है न सोच है न ग्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अवेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्रच है न वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम विच है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिए अदोघ है अदाग है अक्षय प्रताप वेखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न

दुष्ट कंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता श्रेष्ठ कर्ता जगत मै जय गाथ भूत भव भवेख भवान प्रमाण देव गंज आदि अनाथ श्री पद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत किन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मठ कछ अपार भूम काज ले थले मेहमानिय जह नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अन काम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व हर्ता आद रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमा काज ले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपति दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावै शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय केशव गुण चक्रत भेमुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत द्वापर त्यागल जुग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सवय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोत सोत थके महासुर पायु नह पार त्वा प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा श्रियो मस्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहां सृष्ट को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण।

कहो सुसंका सुख है तम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक सुख है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मोह तवन दोहरा कवन ऋष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को वृष्ट है कहो सकल।

चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंडे अखंडन खून खिते दामनी दमंगन दुजा फरंगन फणी फुंकारन जोद जिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकार खंड पुष्ट प्रहार खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी माखासुर मर्दन भूमा का सर उर्धे दामनी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़।

चाचर चमकारन चे छोर हारण धूम धुम कारण द्रप मथे दाड़ विवृतंते जोग जयंते मनुज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य।

केसरी प्रवाहे सुत सन्ना है अगमता है एक वृते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुन बंदन दोष निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रू कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आदि कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय बताला का सनले संकटे निवारण दम धारण तेज प्रकार खंड धुंध तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शस्त्र प्रकार खंड आद नील अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी धुंध तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अदम धारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आदतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरणा से सुप्र सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज

रंग कोकिल सुन लाजे किल बिग भाजे सुखूब राजे मध उरंग। दुर्जन दल दज्जे मंतन रिझे सबैन भज्जे रूह रणंग। जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग। चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते। जाल बाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते। जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते। खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते। बिड़लाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते। सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे। दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अदुल बले। दानवी प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट प्रतर खंड पितल तले। अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते। जय जय हो सी मैं खा सुर मर्दन आद अनाद अगाद वृते। दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे। सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल का हे दुख हरे। गंजन गुमाने अतुल रवाने शांत।

रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्धन बिडाल वदे सरदार अभिप्रखण दुर्जन धरखण तुलमरखण धरम तुझे धूमराज विदुन संश्रोण चुन सन सुंभ न पादन सुंभ मथे जय जय हो सी मखासुर मर्दन आद नील काद कथे।

करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं वेद वरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप चल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भे कहे नाम दास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल युद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशे जतेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निशिदिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख दहता उदार। कई गोट इंद्र जय पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निशिदिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये। दीनन की प्रतपाल करू बारक नीमन गारे पछ पशु नक नाक नराधे सर्व समय सब को प्रतपार। पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दुखन देखत है पर देत न हारे। दाहत है दुख दुखन का दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार। पार न पाए सके पदमापत भेद कते व भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोख रुहान की रोजी नटार। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंग वेव न भेव लग्यो भ्रम शिव भरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिनापत स्यों किन श्री पदमापत पाए। आद अनंत अगात वैक्सो भूत भविख भवान अभय है अंत भी नाना तम आव दाग दुख छिद्र छह है। लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न वह है देह विहीन स्नेह सभोत्र नेह विरक्त गेह छह है। जान को देद जान को देद जमीन को देद जमान को दे है काहे को डोलत है तुम सुंदर श्री पदमापतल है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते वह भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत घवत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ पेट ही गए पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूमा काज पताल रसादल जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न वेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो ध्यान धरो देह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। भेद पुराण कतेब कुरान भेद नृपान सब है बचहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आद अनाद अगाद बेगद वेग जप्यो तिन ही गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोदान महाव्रत धारे देश मिर्यो कर वेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बोन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे बिनांत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बटैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरोध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार पाव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोग जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे आरभ के आरभी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेली तेरी मान सो तपस्या करे दृढ़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है।
बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है रूह के रूहले माग देश के मंगेले बीर बंग से बुंदेले बाप पूंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मचीन के शीश ने आवे ते बते थे आए दोख देह के दलत है जिने दोहे दयो तिन पूर्ण प्रताप वायु सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पैना दीन साधा दीन कहियत है पाइयन अपार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचाता है चीट की जंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससुरास किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है किते महादीन किते ब्यासे प्रवीण किते कुंभेर पुलीन किते जाच कहियत है करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पया पार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कवानी है जंत्र हूँ न जात जा के बाप हूँ न माय ताकि पूर्ण प्रभा की सो छटा के अन मानिए तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के खजानी है तेज हूँ कतार हैं के राजसी को सार हैं के बुद्ध शुद्धता को घर हैं के सिद्धता के सार है कामना के खान हैं के साधना किसान है विरक्तता की बान हैं के बुद्ध को उदार हैं सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप हैं के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है।

काल हों के काल है शत्रुन के साल है मित्रन को पोकद है वृद्धा की बासी है जो गहों को जंत्र है तेज हों को तंत्र है मोहनी को मंत्र है बोरन प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्धों का घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है के अखंड को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार अवार हूं को पार जगो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विध्या पूर्व बिना पार पावे सत्य अनाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अद्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जान के देवन के देव महादेव होंगे देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज होंगे साजा महाजोग हों को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वद छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप काल इंद्र के कूल के हंस निसी सी हरु मही रसी हुसैन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ कठ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद निक सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहार की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गाइयत है भकरी कंधारी गोर कखरी गर्द जचारी भवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज

0: जे महाराज जी फिर तो इसी तरीके नाल जे महाराज जी बचन करनगे आखणगे ता उस समय तू हुण हस के उन्हां बचना नूं टाल देना कर गुस्सा ना मनाउणा कर। इंज माता ने गुल खान नूं बड़ा समझाउण दा यतन कीता है जी हां, पर ता भी कहिंदे उहदे मन विच गल नहीं आई, मन विच अपने माता दे बचन नहीं बसे। बड़ा समझाउण दा यतन कीता, हुण मन एक वारी उधर चला गया ना, हुण गुरु साहिब जी किसे नूं प्रेर रहे ने ते ओ ना करे इंज थोड़ी हो सकदा, ओ ता जिवें चाहुंदे ने बंदा तिवें ही करदा है। हुण महाराज जी ने प्रेरिया गुल खान पठान नूं कि भाई साडे ते वार कर, हुण थोड़ी रुक सकदा, उहनूं रुकण दा यतन कीता। इह पातशाह जी ने कौतक वरताया है, फिर भी उहने अपने मन दे विच जिहड़ा माता दे बचन सुन के सत बचन तां कहा, पर मन नहीं उहदा टिकिया है। सारा रात सोच विचार विच उह पै के लंबा सोच विचारी करी गया, मन विचो विचार नहीं मुके हन। जिवें तिवें करके प्रभात उठ करके तैयार होया है, ते फिर जदों उठिया ना तैयार होया, फिर ओनू आ रहा कि महाराज जी ने कहा थूक जन्म तेरे जन्म ते त्रिकार है, ओ बचन फिर चेते आए हन। ओही बचन हुण मन विच सोची जा रहा कि मैं कपूत आ, मैं किसे काम दा नहीं, मैं अपने कुल दा बदला नहीं लिया, इंज मन ही मन सोच रहा है।
1: खान पान कर दिवस गुजारा
0: कि जिवें तिवें करके खान पान करके अपना दिन उन्ने बतीत कीता है। फिर जदों वेखिया हुण दुपहर दा समा होया, सूरज जिहड़ा ऐन उत्थे चढ़िया होया, दुपहर दा समा आया।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत एक है अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सिवकण को सिव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह पद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचरिय स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा धर तब देहे अपारा, जब आकर्ष करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप आपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ, ताका

कार का छीनत नह भव। आप आपनी बुद्ध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहितेती। तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राव कई रूपा। अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट भयो संकट।

कह चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई मन आगने सह प्रथम मनाऊ किशन बिशन कब हो नह ध्याऊ कान सुने पहचान नतन सो लग लागी मोरी पग इन सो

अपना जान मुझे प्रत परिय छुन छुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दौ चल राख आप मोहे और ना दलै तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो।

को तो है त्याग कहाँ चित तम धरो अब रीज के देहो वह हम कहो जाहो बिनती कर जोर करो जब आओ कि औध निदान बने अत हीरन में तब जूझ मरो दोहरा दसम कथा भागवत की भाखा करीब नाय अवर बासना नाहि प्रभ धर्म जुद के चाय सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुद बिचारे देह अनत नानत रह जसनाओ चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताकतवार भारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुर्ग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे विष्णु भगत किए फल होई आद ब्याह छह सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद

श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानू नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सक

एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तहमलंत जमतरास मिटाई एक अरदास आठ कीरत।

हम जिता हम चलया हम खटया हम गया हम सचार कुड़ियार हम पापन विचार हम चरक सुर कवतार हम सह हम चरोव हम भरिया हम चितोवै हम जाति जिनसी खोवै हम चमूरख हम स्याणा मुख।

सेव किती संतो की दिन सत सत त्याया ओने मंदा पैर न रखियो कर सुकृत रंक माया ओने दुनिया तोड़े बंधन।

लाल छटिया हो एक मन लगते आइए फल ते वे पाइए जे वे कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता धूड़ दिना दी पाइए मत थोड़ी सेवक पाइए मत थोड़ी

कुदरत विसया तेरा त्र जाय लख्या रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कल भरपूर रिया तू सच्चा साहेब सुत सवालियो तिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता।

लख ठगिया पहना मिया रात दिनस जिनाल तक कपाहो गद्दिया बामण बटे आए कोहे बकरारे लखाया सब को आके पाए होए पुराना सुटिया।